0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM। धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों तुसीं फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है, 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आदि गुरु जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनामा

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, Southeast Calgary, near Stampede

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वानां दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
2: पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
3: सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, सत साहिब। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर की साधना ना करके आप अन्य साधनाएं करते हो, भक्ति करते हो, उनसे तुम्हें लाभ नहीं होता। पुण्यात्माओं, किसी भी संत ऋषि की आप थ्योरी देखो, अपना अनुभव देखो, वो क्या कहते हैं कि जैसा भी किसी के प्रारब्ध में संस्कार में लिखा हुआ है वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दुखी प्राणी संकट निवारण के लिए क्या आशा करता है कि भगवान जीव के दुख दूर कर देता है? परमात्मा कहाँ मिलता है? संतों के पास जाते हैं कि वो परमात्मा की भक्ति करके और कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उस शक्ति से वो अन्य को भी सुख देते हैं। इसलिए वो कहां कहां जाते हैं, कोई ऋषि के पास, जंतर मंतर करने वाले के पास, कोई झाड़ फूंक करने वाले के पास, और या किसी साधु संत के शिष्य भी बनकर, जैसे वो बताते हैं, वो साधनाएं करते हैं। और जब उनके संकट दूर नहीं होते हैं तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कोई मंदिर में जाता है, या कोई गुफाओं में जाते हैं, या कोई पहाड़ों पर जाते हैं, या कि तुलसी जाटी के धागे बांधते फिरते हैं, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थानों पर जाते, वहां से कोई लाभ नहीं होता, तो फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि एक परम शक्ति है परमात्मा जो सब दुख दूर कर सकता है। उसके लिए फिर कोई बताता है कि हमारे गुरुजी के पास चलिए, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा। वहां भी चले जाते वो ऋषि, गुरुजी, संत मंडलेश्वर। पहले तो उसके संकट निवारण के लिए कोई ना कोई धर्म पूर्ण क्रिया अवश्य बताते। जब उनसे लाभ नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है, प्रारब्ध माने तेरे भाग्य में लिख दिया गया है, तेरी जीवन हिस्ट्री में लिखा गया है, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का, वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषो किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिस कारण से तुझे ऐसा है पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता, कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो, फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए। तो जिनके ऊपर आपत्तियां संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों से तीन ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन तीन ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता या सर्वपुरुष नहीं कर सकता, ना ये परब्रह्म कर सकता जिसको अक्षर पुरुष कहा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए। सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता। मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार दे मेघ। अब साचा सतगुरु यानी देखो यहां नकली सतगुरुओं की कमी नहीं, उनके पास ये जड़ी नहीं, ये वो पावर नहीं, और परमेश्वर भी स्वयं आते हैं, वो ऋषि संत के रूप में यहां प्रगट होते हैं, उस समय सतगुरु रूप में ही होते हैं वो, और वो हमारे प्रारब्ध के पाप का दंड का नाश करके हमें सदा के लिए सुखी कर देते हैं, फॉर एवर नष्ट कर देते हैं उस किस्मत में लिखे हुए दुख को। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कुट नायतीनु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे ये तीन ताप भी नाश नहीं हुए, तुम्हारे दुख भी दूर नहीं हुए? अपनात्मा वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। अब फिर क्या होता है कि जब तक हमें परमेश्वर का सही मार्ग नहीं मिलता, परम संत मिलते नहीं, तो ऋषियों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं, सभी पहले तो अपने धार्मिक क्रियाएं आपके ऊपर लाद देते हैं, आप भी दुख संकट निवारण के लिए उनको करना प्रारंभ करते हो, अंत में वे आपको ये जवाब दे देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना पड़ेगा। और उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने, कि तू एक जीवन मेरे की तरह पत्नी के वियोग में बिताएगा। और वो दंड, वो श्राप, वो नारद जी के द्वारा दिया गया श्राप, श्री विष्णु जी अपना भी श्राप नाश नहीं कर सके, उसको भी उन्होंने भोगना पड़ा। श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास से 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ और लंका में निवास हुआ। बहुत समय तक वहां युद्ध हुआ, उसके बाद सीता जी को वापस लाए। 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद सीता जी को फिर निष्कासित कर दिया। आजीवन श्री राम और श्री सीता जी कभी इकट्ठे नहीं रह सके। बच्चे कहीं, आप कहीं, वो प्राणी सुखी नहीं हो सकता। भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, लेकिन आप कहीं और पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, तो जीव सुखी नहीं हो सकता। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक जीव संज्ञा में है, ये परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब ये बातें बड़ी खटकती हैं। पहली बार जो ये ज्ञान सुनता हूं आत्मा को, उन आत्मा इनके इतिहास में लिखा है, इस काल ने, ब्रह्म ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा शिव पुराण में कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया एक दूसरे ने और तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारे ये भ्रम का निवारण करने के लिए मैं अब प्रगट हुआ हूं। उनके बीच में जो ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर लिंग खड़ा कर दिया, चमकदार बहुत बड़ा खंबा। तब इसने जाकर कहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। अब थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी ना, तो ये कुनीन जितनी कड़वी है ये शब्द जो दास ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं, क्योंकि ये स्वयं भी अपने कर्म के दंड को भोगा है, और भगवान किसी भी प्रकार का दंड नहीं भोगता। वो तो पाप नाशक है, उनको तो दंड हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरों का भी, वो अपने आश्रितों का भी वो पाप नाश कर सकते हैं। श्री शिवपुराण। एक समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में इस बात पर युद्ध हो गया। श्री ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास उनके लोक में, और विष्णु जी आराम से शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी और भी बहुत से उनके गण पार्षद साथ में थे। ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को खड़ा होकर सत्कार नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं, मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, और विष्णु तू मेरा पुत्र है, तू मेरे आए हुए का सत्कार नहीं करता, तेरे में अभिमान हो गया है, तेरी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी। अब विष्णु जी कहने लगा कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू अपने आप को कैसे सबका कर्ता मानता है, मैं हूं सबका कर्ता। कहने का भाव यह है कि मैं तेरा बाप, उनका मैं तेरा बाप, दोनों भगवान लड़ पड़े। अपुण आत्माओं, ये इतिहास दास अपनी तरफ से नहीं, लोकवेद नहीं सुना रहा, ये इनके इतिहास में लिखा हुआ सत्य ज्ञान सुना रहा। अब इस सत्र की बुद्धि तो 4थी 5वीं कक्षा के बालका की व्याकर है, और वो बच्चे झगड़ रहे होते हैं, टीचर उनको बुलाता है, क्यों झगड़ रहे हो, इधर आओ, क्या कारण है तुम झगड़ रहे हो। वो बताते हैं, जी यू नो बोला मैं तेरा बाप है। दूसरा कहता है, ना जी पहले यू बोला मैं तेरा बाप है। और दोनों एक कमीज पाट रखे, एक दूसरे ने पकड़ के, इसी सत्र की बुद्धि के ये भगवान, ये जिनको भगवान कहते थे ब्रह्मा और विष्णु जी, आपके समक्ष करते हैं, देखना इन्हीं के इतिहास में, और इनकी पूजा करके हम अपने आप को मोक्ष, अपना मोक्ष चाहते थे, यही हम भ्रम रहे थे। ये देखिएगा, ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1 खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता है, ये 11 पृष्ठ पे शिव पुराण, ये विद्वेश्वर संहिता है, भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, भगवान शिव का वहां नंदीकेश्वर, नंदीकेश्वर बोले हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए लेखक की बुद्धि, कहता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से, अब ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान देखियो आगे ब्रह्मा जी का, अपनी इच्छा से ही वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन श्री विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता तुम कौन हो, अरब मिलन जा रहा, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सो रहे हो। हे वत्स, ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्राश्चित होना उचित है, यानी उसकी बुद्धि ठिकाने लानी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर गुस्सा हो गया, पर ऊपर तेनों दिखाया मैं छो मना रहा, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, और बोले परंतु बाहर से शांत रहे और बोले हे वत्स। विष्णु जी बोले ब्रह्मा को, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो, इसमें तुम्हारे नेत्र कुटिल, यानी आंख क्यों टेढ़ी होगी, आंखें क्यों तने लाल कर रखी हैं, और मुख वक्र, और मुंह क्यों टेढ़ा कर रहा है तू, क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले हे वत्स विष्णु, ब्रह्मा जी बोले बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है, हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कहे मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ इसलिए तू मेरा पुत्र है, और मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब श्रेष्ठ काड़े ने पता लग गया तो मरने तैयार हो गए। तब संपूर्ण देवता वो तो लठ बजा रहे हैं आपस में, ब्रह्मा और विष्णु तो मारने कटने को तैयार हो गए, और कहते हैं संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं देखो, पुण्यात्माओं इनकी अकल देखो हमारे देवताओं की, अब यहाँ के देवताएं भी इसे हैं तो बाकी मारे देशों का ठिकाना कहाँ होगा? पुण्यात्माओं यदि किसी दो व्यक्तियों का आपस में कहा सुनी हो जाती है और सभ्य लोग वहां इकट्ठे हों तो वो क्या करते हैं, उनका बीच बचाव करवाते हैं, कहीं इनका आपस में झगड़ा होकर चोट ना लग जा और इनकी मृत्यु ना हो जाए। इनको तो देवता कह सकते हैं जो उनका बीच बचाव करे, और वो दोनों लड़े और देवता ऊपर तो फूल बरसावक शाबाश मरो कटके, अरे वाह देवताओं, ये देवता है तो इनको देवता कह सकते हैं, नालायक आदमी, और ये भगवान है जो इस बात पर लड़न लग रहे, मैं तेरा बाप, उन्होंने मैं तेरा बाप। अब आपको थोड़ा सा मौखिक बताती फिर आसानी से समझ में आओगे। अब यहां तक तो ये हो गया दोनों ये लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप। अब क्या होता है कि इनके बीच में इस इनके पिता ब्रह्म ने, जो काल रूपी ब्रह्म कहलाता है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, वो कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, वो अन्य रूप बना लेता है, कभी विष्णु का रूप बना कर आ जाता है, कभी शिव का रूप अपने पुत्र का, और कभी ब्रह्मा का रूप बना करके किसी किसी को दिखाई देता है। तो ऐसे इसने सबसे पहले भ्रम पैदा करने के लिए इन दोनों के बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग बहुत लंबा पिलर तेजो में। तो ये दोनों लड़ाई बंद करके उस पिलर के ऊपर और नीचे के एंड को देखने के लिए चले गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने एंड देख लिया, इसका अंतिम सिरा देख लिया, और विष्णु जी ने सच्ची बता दी। तो उस समय ये काल प्रगट हो गया शिव रूप धारण करके, शिव रूप धारण करके, जैसे सर्प जटा गले में दोहरा रुद्राक्ष की माला, सर्प लेकर त्रिशूल वहां प्रगट हो गया अपने पुत्र शिव के रूप में। तब इसने दोनों से कहा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये अच्छी बात नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। अब ये समझाते हैं आपको, अब ये प्रश्न नंबर 17 आपको दिखाते हैं, विद्वेश्वर संहिता का शिव पुराण पृष्ठ 17 और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। अब यहां नंदीकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नमर हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, उन दोनों की अज्ञानता, विष्णु और ब्रह्मा की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। ये सुनने की बात है 17वें पृष्ठ पे। अब ये काल इनका पिता कहता है, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं है। ये काल कहता, मैं ही सब कुछ हूं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी पिलर, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, निष्फल नहीं निष्कल है, और ईश्वर ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। अहे, तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया, तुमने जो अज्ञान से मूर्खता से अपने आप को भगवान मान लिया। ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है ये काल भगवान, ये शिव पुराण में लिखा है, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। और उसके दूर करने को ही, यानी तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए ही मैं रणस्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। या देखना, मैं ही परब्रह्म हूं, ये काल मूर्ख बनाओ इनको, मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है, सर्वव्यापी होने से और जगत वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं, मैं इस सब का ईश्वर हूं, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप का प्रारंभ हुआ। ये 18वें पृष्ठ पे, 18वां पृष्ठ हो गया, ये 17वां हमने पढ़ लिया। अब इन विदेश्वर संहिता 62 टीका टीका 9वां अध्याय खत्म हो गया। अब ये 10वां यहां से प्रारंभ होगा। इस 10वें अध्याय में ये क्या कहता है, हे पुत्रो, ये काल कहता है, हे पुत्रो, ये कृत आपने, यानी कृत माने ये जॉब, नौकरी, स्थिति और उत्पत्ति की तप से प्राप्त किया है, यानी तुमने तप करके प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, ये कृत है तुम्हारे, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं, दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को, अब ये ध्यान से देखना, यहां ये पुराण का ज्ञान बोल रहा है, जो यहां पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इन रुद्रों से, जो 11 रुद्र हैं, उनसे भी भिन्न है, वो काल है और वही 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब ये जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और महेश को कह रहा है कि इनको भी मैंने ही एक एक विभाग दिया है और इन सभी ने तप करके प्राप्त किया है, वो चौथा यानी पांचवा कौन है, वो काल है। और वो यहां भी कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, प्रश्न 19 पे। ये प्रश्न नंबर 19 विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। अब यहां से पढ़ेंगे ये 19 पृष्ठ पर, देखिएगा रूप वेश कृत आसन वाहन और आयुध में हमारी सुनता है। हे सोमे, मेरे ज्ञान के विमुख होने पर, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल हो जाता है, इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण करने से मेरा स्मरण होता है। अब ध्यान से देखना, ये ओम काल का मंत्र है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध हो रहा है। उत्तर की ओर मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ, सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी यही गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। तो सिद्ध हो गया कि ये जो पुराण का ज्ञान दे रहा, शिव पुराण का, ये काल है और यही श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग दो का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अकार आदि मकार कर्म से अर्थात अकार से, नकार से, उकार से, मकार से, मकार से, सी व नाद से यह प्रकट हुआ है। और इसी पंच अक्षर से, पांच भेद से, मात्र का आकार से ये सारा कुछ लड़क्रान हुए। इससे शिरो मंत्र और चार मुख से त्रिपाद गायत्री यानी ओम नाम से ही सारा कुछ आगे, इसके ये सब इसी से बने, करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए इसी से, लेकिन मूल मंत्र यही है। इस श्रेष्ठ मूल मंत्र से सब सिद्ध भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है।
4: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
5: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
6: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
7: ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਲੰਬਰ ਪੈਕੇਜ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਗਰਾਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਟਰ ਤੇ ਫੈਂਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 403-433-5555 ਯਾਨੀ 403-433-5555 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੰਦਰ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 3501 23rd Street ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਊ ਪਾਇਲਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੈਟੀਓ ਡੈਕ, ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਜ ਫਲੋਰ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਅਤੇ ਸਿਕਿਓਰ ਬੇਸ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਊ ਪਾਇਲਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th Street साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
2: पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
3: सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। इस मूल संस्कृत जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इस विद्वेश्वर संहिता का अनुवाद करते समय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिवपुराण के अंदर इन्होंने अपनी सोच ठोक दी, वहां लिख दिया ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जाप करो। लेकिन मूल संस्कृत में, मूल पाठ में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय जाप करो। ये लोक वेद का मंत्र है और इसने सिर्फ एक ओम का जाप करने को कहा है कि इस मूल मंत्र के जाप से ही सब लाभ होगा, आगे करोड़ों मंत्र जो तुमने बना लिए वो व्यर्थ हैं। इसलिए तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और ये प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। ये है विद्वेश्वर संहिता श्री शिव पुराण, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पृष्ठ नंबर 24 पे ये ब्रह्मा और विष्णु के बीच में इस काल भगवान ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, ये पिलर यानी लिंग खड़ा कर दिया और इसका भेद ये नहीं पा सके, फिर वो खुद प्रकट होकर इनको समझाने लगा। ये पृष्ठ नंबर 25 पे 24 पे आपने वो स्तंभ देखा। नीचे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा उस काल भगवान से, ब्रह्म से, सदाशिव से, हे प्रभु सृष्टि आदि पांच कर्तव्य के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यानी उकाल ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुमको उनके विषय में बताता हूं। ब्रह्मा चूत इसको कहे हैं विष्णु को, सृष्टि पालन संहार त्रोभाव और अनुग्रह, ये पांच ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। 26 पे देखो, कमाल कर दिया, ये 26 पे है। पुत्रो, वही वर्णन है जो आपको अभी खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन से पढ़कर सुनाया था, ये तो वही है नूकानु। पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीची नामक दो कृत प्राप्त किए। विष्णु और ब्रह्मा को कह रहा है, ये काल ब्रह्म ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, दो अन्य उत्तम कृत सार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब ये जो बोल रहा है ये ब्रह्मा विष्णु में, इसका पिता ब्रह्म है, काल है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करते रहने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का यानी ए और उ, दक्षिण मुख से मैं मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता के धर्मराठ के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता भी यही काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, वो कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गति। तो ये एक इन पांच अवयवों से अकार ए ओ मैं बिंदु आदि से मात्रा से एकीभूत होकर के ये ओम ऐसा नामक एक अक्षर हो गया और ये मेरा मंत्र है। अब इन्होंने यहां गलती की है, देखो इसने स्पष्ट कर दिया, देखो अकार से उत्तरवर्ती मुख से अकार माने ए और पश्चिम मुख से उ, ए उ मैं इससे मिलकर और बिंदु और मात्रा से मिलकर ये पांच इन सभी अवयवों से, इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन पांचों मंत्रों से एकीभूत होकर के ये एक ओम अक्षर हो गया। और ये अपनी अज्ञानता से अनुवाद करता क्या कहता है कि मकार आदि कर्म से कर्मशः प्रकाश में आया है, वह अकार आदि कर्म से, ये अनुवाद गलत कर रहा है, वह अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से कर्मशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है, ये ओम नमः शिवाय ये अनुवाद करता की अपनी अज्ञानता है। मूल पाठ में ये कहीं ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, केवल ये कहता है कि इन पांचों अक्षरों से इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर इस प्रकार ये पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। ये अकार मकार तो ये कही रहा है यहां से, इन पांचों से मिलकर ये एक अक्षर हो गया, नथिंग एल्स, ये ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है, ये गलत। इसका जाप करके हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपनी सारा जीवन व्यर्थ कर जाते हैं इन भ्रमित लोगों के द्वारा। हमने हिंदी पढ़ते रहे, हिंदी में ये मंत्र मिल गया, इसका रगड़ा लगा दिया। ये शास्त्र विधि त्याग्रमण मानातरण होने से यूजलेस है, ये मंत्र नहीं करना चाहिए। अपने आत्माओं आपको पता चलेगा, आप शिक्षित हो, आप जी जो साधना करते थे वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कार्य सिद्धि होती है, न उनका कोई सुख प्राप्त होता है, यूजलेस। तो ये ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, केवल एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का है। और बाकी जो कमलों को खोलने के वो मंत्र अलग से हैं, उनकी क्रियाएं अलग हैं जो हमारे कमलों से हमें बरी करेंगे, हम वो मंत्र भी इन्हीं में से हैं। अब ये मूल संस्कृत आपने देखा, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से आपको मूल संस्कृत भी दिखाएंगे, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसमें ओम नमः शिवाय का जाप का संकेत हो। श्री शिव पुराण जो आपको पहले दिखा रहे थे इसमें सारा संस्कृत भी साथ में है। विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय 10 का हम पढ़ रहे हैं 19 पृष्ठ पे। इस कारण से ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जाप करो। इस ओंकार नाम के मंत्र का आगे फिर विशेषण बताया है कि यह वाचक है और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। यह स्पष्ट लिखा है, उत्तर की ओर मुख से आकार ऐ, पश्चिम की मुख से उकार यानी ऊ, और दक्षिण के मुख से मकार यानी मैं, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार यह पांच प्रकार से वह निर्गुत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इसमें कहीं और नहीं है ओम नमः शिवाय, ये मूल संस्कार देख लो, एक ही भूत होकर के ओम इति एक अक्षरम अभवत। कितने भी इसमें ओम नमः शिवाय आप नहीं पाओगे। आप देवनागरी लिपि को खूब पढ़ सकते हो, इसमें कहीं भी ओम नमः शिवाय नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से ये केवल यही एक ओम मंत्र होता है। ओम ये एक अक्षर हो गया पांच अक्षरों से मिलकर। अपने आत्माओं, इस मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है। परमात्मा ने बताया है, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई तीन लोक का मोल। कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये तीन लोक का मोले। एक मंत्र आप करते हो सतनाम का, तो यहां परमात्मा कहते हैं ये सतनाम है दो अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है और जैसे ओम तत् सत में तीन मंत्र बताए, इनमें से एक तत् मंत्र सांकेतिक ये दास बताएगा उसको और दूसरा नहीं बता सकता, अधिकारी भी नहीं है और उस दास से पहले किसी को इसका पता भी नहीं था। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये लिखा था और उसको अब डिस्क्लोज करना था, पहले गुप्त रखना था, ये परमात्मा का आदेश था। इसी कारण से आदरणीय नानक साहिब जी ने भी इस दो अक्षर के सतनाम का जाप किया लेकिन अन्य किसी भी शिष्य को प्रदान नहीं किया और न ही उनको जाप करने का आदेश दिया। जैसे समंदर की साखी, जैसे गुरु नानक देव जी की साखी है, जन्म साखी, उनमें समंदर की साखी है, उसमें मर्दाना और बाला दोनों गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें श्रीलंका दिखाने की कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि चलो समंदर के ऊपर का चल पड़े, जैसे थल पर चलते हैं, और उनसे कहा कि तुम वाहेगुरु जपते रहना। अमरदाना और बाला तो वाहेगुरु जप रहे हैं और नानक जी ये दो मंत्र का जाप जप रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं मुख से मौखिक। उस दिन मर्दाना ने भी वही सतनाम जाप शुरू कर दिया, वो डूबने लगा समुन्द्र में। तब गुरु जी ने पूछा, मर्दाना तू वही जाप कर जो मैंने कहा, तू मेरी रीस मत कर, मेरे वाला जाप मत कर। तब उसने वही जाप किया, वो दो अक्षर का जाप बंद कर दिया। अपनात्मा, इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि सुनियोजित तरीके से परमात्मा यहां तक लाए हैं इस रहस्य को। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था धर्मदास जी को, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बार ना जाई, ये असली मंत्र कहीं बार ना जाई। और इस मूल ज्ञान को भी, यथार्थ ज्ञान को भी अभी तक छुपा के रखना है। अब कलियुग के इस समय में इसको डिस्क्लोज करना था। इसे सिद्ध है कि ये मंत्र अभी किसी के पास नहीं था। गुरु नानक देव जी को अवश्य पता था, लेकिन इन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी को, सिख समाज को नहीं दिया। और इस परमेश्वर के इस सतनाम के जाप से आपके पाप कटेंगे, आपके श्राप कटेंगे, आपके ऊपर तीन ताप का जो दुख, भूत प्रेत पितर जो भी आपके ऊपर आपदाएं आई हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। क्या बताते हैं? जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाश। कबीर परमात्मा कहते हैं अपने उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो, हृदय धरण का अर्थ यहां पर है कि जब आपको यू नाम मिल गया और आपने सच्चे दिल से इसका जाप शुरू किया, नियमित रहे और मन में किसी प्रकार की कोई विक्षेप आपका उत्पन्न ना हो गुरु परमात्मा और मंत्र के प्रति, फिर ये आपके हृदय धरा गया। उसके बाद जब तुम सुमन करोगे सच्चे दिल से और बिल्कुल निशंका होकर के, निसंशित होकर के, फिर देखना इसका कितना कमाल होता है। तो जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास, 1,000 क्विंटल और चाहे 1,000 टन सूखा घास अड़ंगा पड़ा हो कहीं पर, और उसको ढोन लग गया आदमी, कद्दे भी ना उठना कि दरिया जा, एक माचिस की सींक जलाकर चिंगारी ला दे उसमें, सारे नफसवा करके राख बना दी और चलेगी तेज हवा, इधर उधर बखेर के उसको कति क्लियर कर देंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गासी, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने काले काले घोर बादल छा जाते हैं, उसका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ऐसे आप आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चित मंजन फिर झलक तेज नयारे। अपनात्माओं, आपने उपदेश भी ले लिया, आप जाप शुरू करो सच्चे दिल से मर्यादा में रहकर। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि इस मंत्र से आपके असंग

कपड़ा दिखन लगेगा, यो कपड़ा भी है कि मैं औरत अड़ंगा है। और फिर उसको बार बार फिर धोएंगे, साफ करेंगे, तो धीरे धीरे साबुन से ना होगा तो पेट्रोल से ड्राई क्लीन करेंगे तो वो कपड़ा साफ होगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हमने कहते हैं योगन योगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होवेगा तेरे सतगुरु लगे ना काने। योगन योगन की वासना, योगों योगों के इतने पाप कर्म हो गए इकट्ठे आने, और निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु तत्वदर्शी संत परम संत तुझे मिला नहीं, वो सतगुरु लगे नहीं कान, यानी उनके वचन सुनने को नहीं मिले। और जब आपके हृदय में, फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपके हृदय में एक ऐसी पवित्र प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। पहली बार तो आप सत्संग सुनते हो, दो चार बार तो ये ज्ञान सुनने को भी अच्छा नहीं लगता, धीरे धीरे धीरे धीरे आपको इतना आनंद आएगा फिर, क्योंकि जैसे मलेरिया के बुखार में जबर में इंसान को, व्यक्ति को खाना भी कड़वा लगे, सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, टेबलेट खाने से यानी कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है, कहां तो वो रोटी भी खाना नहीं चाहता, वो भी कड़वी लग रही है, उस कड़वी को मीठा बनाने के लिए कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है, कुनीन खानी पड़ती है, न चाहते हुए भी खानी पड़ती है। तो ऐसे इस ज्ञान को, और फिर मंत्र के मिल जाने पर सुमरण उसके ऊपर विशेष कसक से जाप करने को, आपने न चाहते हुए कुनीन की तरह खाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो प्रारंभतः आपको मजबूरी सी होगी कि ये बता दिए इतने मंत्र गुरु जी ने, ये कैसे होंगे, अरे सुबह तो लेकर शाम तक मजदूर कस्सी बजावे, किसान हल जोते, सारा दिन फदर फदर पता नहीं कहां तक पहुंच जाते हैं, क्या भगवान का बैठ कर चलते फिरते मंत्र नहीं कर सकते हम। कुछ दिनों के बाद फिर इस मंत्र के बिना आपका दिल भी नहीं लगेगा। तो जैसे बुखार किसी को हो, जबर हो गया है, तो प्रारंभ उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कुनीन खाने से, कड़वी कुनीन ही खाने से, न चाहते हुए भी खाने से, फिर कुछ दिनों के बाद उसका जबर ठीक हो जाएगा, फिर वही मीठी वस्तु आपको जो पहले कड़वी लगती थी भोजन, अब वो स्वादिष्ट लगेगा। अब जैसे परमात्मा कहते हैं कबीर, पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, कै उंग कै ऊठ चले ना ओर बात चलावे, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। तो ऐसे आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का जबर हो गया, और इस जबर का नाश करने के लिए ये कड़वी टेबलेट, ये सत्संग वचन जो आज तक आपने सुने नहीं, एक बार तो विद कह आदमी इस ज्ञान को सुनकर, एक बार तो ऐसा है जैसे जीभ के ऊपर कुनीन रख दी, ये बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है, लेकिन इस कुनीन को आपने खाना चाहिए, इस तत्व ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये मंत्र आपको दिया जाता है, तो कुछ दिन तो भक्त का, भक्त आते हैं शिकायत प्रार्थना करते हैं कि सतनाम चलता नहीं, ज्यादा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद आप इसको चलाते रहो धक्का सा करके कुछ दिन, फिर अपने आप चलेगा, आपको बहुत आनंद आएगा, फिर आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, भगवान की जरा सी भी चर्चा होगी। तो क्या बताते हैं, योगन योगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होएगा तेरे कोई संत लगे ना कान। जब संत आपके कान लग जाएंगे, यानी सतगुरु मिल जाएगा, फिर क्या होगा, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। आपको बताया ना कि जैसे हजार टन घास फूस पड़या हो अड़ंगा, एक माचिस की सीख लगा दे, सवा हो गया, तेज हवा चलो इधर उधर बुना कर ऐसे फेंक दिया, कहीं गया कहीं गया। तो क्या बताते हैं कि असंख्य जन्मों की वासनाएं तुम्हारे पाप कर्मों को परम संत से प्राप्त उस सतनाम के मंत्र से सभा कर दिया जाएगा, और फिर प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलके तेज नयारे, फिर आंखों में भगवान के प्रति वो प्रेम जागेगा, आंखों से आंसू चलेगी, वह प्रेम की पवन चलेगी, इन बादलों को जो बीच में बादल अड़े हुए हैं कर्मों के, उनको फेंक देगी, तितर बितर कर देगी, और फिर आपकी आत्मा

0: निर्मल होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकदे हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: तन ओ मस्तक तन ओ

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue Northeast Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary. Program da eh hissa tuhade tak Cassidy Hay Injury Law to Tara Cassidy ji de sahyog naal pahunchaya ja reha hai. Inna to kisi vi tarah de motor vehicle accident injury claim bare koi vi jankari lain layi tusi Tara Cassidy ji nu 403-777-1099 yani 403-777-1099 te sampark kar sakde ho. कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नू 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stampede

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। यह 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करते हैं। इन्हां तो किसी भी तरह के नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-200

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ फीस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैल

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करा दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले किते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी ले कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो www.

नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास बोले नानक जी उपाय के लिखना है धर्म बाले उत सचे सच निबुड़े चुन वक्त कटे जद माले था न पैन कूड़े बोंकाले दो जुक चले।

0: सच बुझाया सच बुझाया।
1: थोड़ी नाम करे जे अपनी तां नगरी सतगुरु पाया एहो जी।

0: सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाले।
1: श्लोक महला पहला मुसलमाना सब शरीयत पटपट करे विचार बंदे से जे पै वचबंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ईसाला दर्श रूप पार कीर्तना वैर चा पूजा गरवास पकार जोगी सुनते आवन जेते अलख नाम करतार सुखमूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख पुजै देने कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सौ करे संसार चोरा जारा तै कूड़ियारा खारा बावे कार इक हुंदा खाए चले थाऊ तिना पिकाई कार जल थल जिया पुरिया लो आया कार
0: मुसलमान की पेड़ पे कुमार घर भांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चरचड़ पवे अंग्यार नानक जिन करतै कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर के न पाए।

बात है। हाउ मैं कर्म कमाए, हाउ मैं ही बंदना फिर जो ने पाए, हाउ मैं कितों पजाए कित संज में जाए, हाउ मैं एहो हुक्म है कह किरत फिराए, हाउ मैं दीर्घ रोग है दारू पीसमाए, कृपा करें जे अपनी ता गुड़का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो हो जनो इत संजम दुख जाए, पौड़ी सिंह की संतो खाई जिन सचो सच ते आयो नि मंदे पैना रखे हो।

0: चुके तक तक हर जन हर हर होया नानक हर के।
1: श्लोक पहला पहला प्रखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता दीपा लोहा मंडला खंडा ब्रपंडा अंड जित पजा खानी सित जा सो मित जाने नानक आसरा मेरा जनता नान जन तो पाए कै समाले सबना जन करता करना किया चिंता पे करणीता सो करता चिंता करे जिन्हें पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस ते दिवान भग नानक सचे ना बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
0: लख ने किया चंगिया या लख पुन्ना प्रमाण लख तप पुर तीर्थां सहजोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखे आयावन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू।

सतगुरु एक पेंड जाए चलो सतगुरु कोट पेंड आगे होए लेत है चरण शरण गुरु एक पेंड जाए चलो सतगुरु।

0: आप जड़ाएं दे हाँ ताड़ी का नीच जा और उत्तन जात सदाएं दे तेन नंगा जी तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
1: थोड़ी भगत रहे मन भाव दे दर सोन की रदगाज नान करमा बहरे दर टोना लेनी ताव दे एक मोलना भोजन प्राण होता बनाएं दे हों टाटी का नीच जात और तुम जा सदाएं दे तेन मंगा जी तुझे ते आए दे
0: सच सा

0: पाइए मत थोड़ी सेव आइए सेव आइए सेव आइए
1: थोड़ी दान मंडा चली खाओ जे मने त मस्तक लाइए कूड़ा नाल छटिया इक मना लखते आइए।

0: देख पत पवे
1: चंगे से के पौड़ तोर कर जनक तुत पाया तातनी हसमत आया न जंत के बस किश नहीं तद वेकी जगत उपाया एक नन तू मिल ले एक आप हो तो दुख हुआ।

हाँ बलहारी सतगुर चरणा, हाँ बलहारी सतगुर चरणा, धन सवेला जित दर्शन करना, धन सवेला।

0: शब्द निशान बुझायो।
1: प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली ना हुट्टा, सतगुर शब्द अथा अमित तारा रस गुट्टा। मत माता संतोख पिता सर सहस मायो, अयुन्ने संभवयो जगत गुर बचन तरायो। अवगत अगोचर पर पर मन गुर शब्द वसायो। गुरु रामदास कल उच्चर तैं जगत उदारन पायो। अवगत अगोचर पर पर मन गुर शब्द वसायो। गुरु रामदास कल उच्चर तैं जगत उदारन पायो।

0: परम पै भूले सुत दारा सेओ प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सहनाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई।
1: सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठियां सो ही है। सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाहो जिस पास बैठियां

हर भजे न तीर्थ सेवे। चोटी काल गही रहा दारा मीत पूत रथ संपत तन पूरन सब मही और सगल मिथ्या ए जाना भजन राम को सही फिरत।

0: जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला नामा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सीवे चोटी काल गही।
1: दया करो बसो।

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माय सात गुरु में पाया सतगुरता पाया सहज सिद्धि मरम जिया बधाइया राग रतन परवार बरिया शब्द गावड़े आया शब्दों तक गावो।

काला चौथा जन्मस्तक तोर हर लिखिया तिन सत गुर मिलया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया और ज्ञान कट बलिया।

0: आराध हर मिलिया हर मिलिया।
1: श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का प्रति कृतवाह जु जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझै ताहे सत जबरा संतोखा धर्म गर्थ वाहो त्रेत रजते का जोर गर्थ वाहो द्वापर तपे का सत गर्थ वाहो कल जुग रथ अगन का कूड़ गर्थ।

राम नाम देवा मैं सूर नाय लय प्राशत जाहे नानक तो मुखंतर पाहे जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान।

जिन्हे सहर नाम नचित्यो सिताहि जग आए राम राजे। ए मानस जन्म दुर्लभ है।

0: पहला पहला गो ब्राह्मण को करलावो गोबर तरना जाय। धोती टिका तज माली ताल मलेशा खाई। अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका पाई। छोटी ले पाखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करन आज शुरीब गायन तन गलताग। तिन घर

0: हर ताण सताणे।
1: श्लोक महला पहला, जे मोहा का कर्म है कर्मे पितृ दे अगै वस्याणी है, पितृ चोर करे वटिए हद लाल के मुसीए करे।

0: साथे वर पूजया तन हर पूज करा।
1: श्लोक महला पहला जेकर सतगुरु मने सत्य सतगुरु होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके दिया वादना कोए पहला पानी जो है जित हरिया सब कोए सुत क्यों कर रखी है सुत पवर सोए नानक सुत के बना उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला।
0: मन का सुत को लोभ है जे व सुत कूड़ अखी सुत को वेखना परत्रे पर धन रूप कन्नी सुत कन पहला तबार खाए नानक साधमी बंदे जमपुर जाए महला पहला।
1: सबो सुत परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाणे आवे जाए खाड़ा पीना पवित्र है दि तुर संभाए नानक जिन्नी गुरमुख बूझिया तिना सूतक नाए पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सल।

0: जिसकी तृष्णा भूख सबे उतरे, जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ न आवे, जन नानक को हर कृपा कर, नित जपे हर नाम करावे।
1: श्लोक महला दूजा, एक नहीं आशकी तुझे लगे जाए, नानक आशकांडिये सदीरे समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आश क्यों ना आखिए जिलिखे वरते सोई। महला दूजा,
0: सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवे कूड़िया थाए न गाए, पाए पोड़ जित सुख पाई है, सो साहेब सदा संभालिए जित कीता पाए अपना, साफ काल

वस्तु अंतर वसमावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास महला दूजा।

मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पह गयो, हर बंस जगत जग संचरयो, सो कवन कह श्री गुरमयो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु सोडी सुल्तान पिता चौथे पातशाह, धन धन।

ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रां साह साहन गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत देवपुरी नह गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुर देव तुहे जस जय जय जंप है असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंप है कटे सो पाप तिज नरो के गुरु रामदास जिन पायो शत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन कौ दे आयो सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करन हारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रस पिया सुख टल गुर सेविया एनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों करसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा दशाह जिस पास बैठिया सोहिया
ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ।

सुरठ महला नवा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे न तीर्थ सेवे छोटी काल गही मन की मन ही माहे रही ना हर भजे न तीर्थ सेवे चोटी काल गही दरमीत पूत रथ संपत तन पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जन भजन राम को सही फिरत फिरत बहुत ही जुग हारे।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 या फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

साढ़े गुनाह की गिनती ना करी, असी बहुत बड़े गुनाहगार हाँ। जे गुनाह की गिनती करेगा तो असी कदे भी नहीं बख्शे जा सकते। सतगुरु सानू एक तरला करन दी जाच सिखा रहे हैं। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है, तू बहुत बख्शंद है। सतगुरु बख्शिश कर, सानू गुनाहां दे परियां नू तार देवो, सानू औगणां दे परियां नू तार देवो। तेरे लिए केड़ी बड़ी गल है।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा मादो। हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर देसा दंडौत बंदन अनिकबा, सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता, तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करने की जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है यूनिट नंबर 28 पंजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
3: कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

परम सन्मान योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर आप जी हाजरी भर रहे हो। आप जितने हजूर दे चरणा विच उपस्थित हो प्यार अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश, फिर उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। ए मनुखा जन्म अमोलक है, इसनू एवें व्यर्थ अकारथ ना गवा जाए। जे तुहाडे मन च ए वे कि असी बहुत जिंदगी च ऐसे पाप कर्म कीते ने जिस दा किसी नू पता नहीं, सिर्फ मैं ही जानना, ते महाराज कहिंदे ने इस गल नू भी लै के ढेंदी कला च ना जाओ, ओह पतता नू पवित्र करन वाला है। जे ए सोचो भी मैं मायक तौर ते बहुत गरीब हां, ते सतगुरु कहिंदे ने इस गल्लो घबराओ ना, उस दे दर ते बाहर दी अमीरी दा कोई अर्थ नहीं। ओह गरीबां दा बंधप है, पापियां नू पवित्र करदा है, ओदी सरन विच आ जाओ। फिर नाल इक उदाहरण देंदे ने, जिहड़ी हाथी दी उदाहरण अक्सर गुरु तेग बहादुर वरतदे आ कि गज हाथी नू तंदवे दी गिरफ्त विच आए नू परमेश्वर ने बचा दिता। उस तो बाद हजूर कहिंदे तुसी गुरमुख बन जाओ ते मुक्ति दा रस्ता अपने आप मिल जाए। पर गुरमुख बनण लई परमात्मा दे गुण गाओ, ओदी सरन विच आओ, माया दा मोह अंदर दे हंकार नू त्याग के पार ब्रह्म परमेश्वर दी बंदगी करो। एह है अज दी विचार दा विशा। सतगुरां ने पहली जो रहाओ दी तुक दो तुकां ने, इस दे अखरी अर्थ ने साधो। रोज असी कर रहे हां साधना करन वाले, परमेश्वर दे घर नू मोहब्बत करन वाले, जां जिन्हां ने अपनी जिंदगी दा निशाना जां मंजिल ਇਹ ਮਿਥੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਾਰਾ। ਉਂਜ ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਣ। ਉਂਝ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਬਹੁ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਸਮ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਬਹੁ ਅਰਥ ਨੇ। ਸਮ ਅਰਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਰਥ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਣਾ ਬੋਲਨੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਫਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ,

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करने की जानकारी लेने लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल का पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। और जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहते हो तो इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-453-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कि जदों श्री गुरु अमरदास साहब जी ने ज्योति जोत समाउण की तैयारी की उहदे तों दो दिन पहला भादरों सुदी त्रौदसी वाले दिन आप जी नूं गुरता गद्दी उपर 1631 बिक्रमी विच सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने सुभाए मान किया। इस तों पहला ही सतगुरां दे हुक्म मुताबक आप जी ने इस नगर नूं बन्नणा इस नूं वसाउणा आरंभ किया सी। जो जो निशानियां सतगुरु अमरदास साहब जी ने दसियां सन कि तोंग और इस तरह गुमटाला इत्यादिक पिंडां दे विचाले इहो जी जमीन है, इउं इउं बेरियां दे दरख्त ने, ऐ ऐ उत्थे निशानियां हन, उत्थे जाके तुसीं सरोवर लगाउण दी सेवा आरंभ करो। पहला सतगुरु अमरदास जी के बचन मुताबक सारियां निशानियां लभ के संतोख सर की सेवा आप जी ने आरंभ की सी और उहदे तों उपरंत फिर यह जो अमृत सरोवर है अमृतसर इस दी सेवा आरंभी। पर वापस गोइंदवाल साहब आप जी नूं बुला ले जाण तों यह सरोवरां दी सेवा जिहड़ी अध वाटे रह गई रुक गई सी। सतगुरु जी ने तीसरे पातशाह जी ने नगर वसाउण दा हुक्म कीता ते सब तों पहला अपने रहण वास्ते घर बनाउण लई हुक्म कीता सी। सो सतगुरां दे हुक्म दी पालणा करदिआं होइआं नगर दी मोहड़ी गड्डी और अपने वसेबे दे वास्ते घर बनाया। गुरु का घर होण करके उस नूं गुरु के महल दे नाम नाल जाणिआ गिआ जो अज गुरद्वारा गुरु के महल साहिब सुभाए मान है। गुरता गद्दी दी महान दात प्राप्त होण उपरंत इत्थे गुरु के महल विखे ही आप जी ने निवास रखिया और इउं नगर वसाउण दे वल आप जी ने पूरा पूरा ध्यान दिता। सारा कारज जिथे दुनियावी रूप विच इह निभाया उत्थे सतगुरु नानक देव साहब जी दे दर घर दीआं बेअंत संगतां नूं नाम बाणी दा उपदेश दिंदिआं होइआं तिन्हां दीआं मनोकामनावां पूरियां करदिआं होइआं लोक परलोक दे विच आप जी सहायक होए। दूरों नेड़ियों दूर दराडियों बेअंत संगतां आप जी के दर ते चल चल के आउंदियां अरदासां बेनतियां करदियां सब दीआं मनोकामनावां संपूर्ण हुंदियां। मालवे की धरती तो आ के बिरध उम्र विच बाबा आदम जी आप जी तो ब्रह्म ज्ञानी पुत्र की दात प्राप्त करदे ने। ऐसियां बेअंत वडियाईयां हन जिन्हां दा वर्णन कर सकना संभव नहीं। बहुत वडियाईयां मेरे साहिब नह जाही गणियां। इत्थे अमृतसर साहब विखे रहिंदियां होइआं सो आप जी के पुत्र पृथ्वी चंद जी सारा कारज भार संभालदे ऐ। बाबा महादेव जी अपने मस्त सुभा दे विच रहिंदे ने। सतगुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी मन विच भगती भावना रखदिआं होइआं पिता सतगुरु नूं केवल दुनियावी पिता दे रूप विच ही नहीं बल्कि श्री अकाल पुरख जी का प्रतख रूप जाण के अपनी सतगुरु जाण के शरदा भावना दे नाल सेवा भी करदे ते हर हुक्म की पालना भी करदे ने। लंघे दिन सतगुरु महाराज श्री गुरु अर्जन देव जी का गुरता गद्दी दिवस संगतां ने मनाया है और सत्कारयोग सिंह साहब जी पासों प्रसंग सरवण किया है कि किवें सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्हां बारे भट्टां ने फुरमान किया तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। शरीरक जन्म हुंदिआं सार ही ब्रह्म ज्ञान की अवस्था दे विच आप जी प्रवीण हन, ब्रह्म नूं पछाणिया होया है, गुरमत दे धारनी हन। किवें उन्हां दी घालणा तों उन्हां दी सेवा तों हुक्म मन्नण दी प्रवृत्ति तों प्रसन्न हो के धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी ने गुरता दी दात आप जी नूं भाव के सतगुरु अर्जन देव साहब महाराज जी नूं बख्शिश कीती। 1638 बिक्रमी संमत कत्तक सुदी दूज दा दिहाड़ा तखत बह तखतै की लायक दे महावाक अनुसार सतगुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपने दोहां वड्डे पुत्रां नूं

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670-63 Avenue North East कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी उर्दू मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: ये है सत्यार्थ प्रकाश और ये है महर्षि दयानंद। अब देखो इनके इस चित्र को देख कर आदमी कटका मर जाए इसके ऊपर। अकबड़ा विद्वान था, ओहो बड़ी साधना करता होगा। अब इसके ज्ञान को दिखाएंगे आपको। ये कहां से छपा है? ये सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण ही संवंत है, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी रचना की गई है। किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद के। आ गए इतनी लंबी फीत और फिर महर्षि दयानंद और फिर सरस्वती और स्वामी विरचित है। अब इसके फीत इतनी बड़ी ला दी श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इस स्वामी जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक, रची गई है और प्रकाशक है वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। ये छपी कहाँ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, यहां से छपी है। अब इसमें आपको सातवें समोल्लास में ले चलते हैं। ये है सप्तम समोल्लास यानी सातवां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश है, पृष्ठ 154 पर। इस प्रकाशन के 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न ईश्वर साकार है वा निराकार? उत्तर स्वामी दयानंद जी का कि निराकार है। और 155 पृष्ठ पर स्वयं ही ये स्वीकार कर रहे हैं, साकार भी बता रहे हैं इसको। किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं? स्वामी दयानंद जी कहते हैं करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? यानी कोई साधना भक्ति करेगा भगवान कि क्या उसका पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते कि नहीं, साधना उपासना से पाप नाश नहीं होता। अब प्रश्नकर्ता कहता कि फिर स्तुति प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या?

हो जाएगा, या स्वयं कह रहे उसका साक्षात्कार हो जाता है उपासना से और पाप कटते नहीं। अपुण आत्माओं, ये ऐसे महर्षि थे, इनको ये नहीं मालूम तुम 154 प्रश्न पर निराकार बता रहा है, 155 प्रश्न पर कह रहा है परमात्मा पर ब्रह्म से मेल हो जा और उसका साक्षात्कार हो सकता है। फिर साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? तत्व ज्ञान हीन प्राणी ऐसी उवाबाई ही बकते हैं जिनका कोई आधार ना हो। अपने आत्माओं, जैसे एक इसमें ये प्रश्न ये भी आया है कि परमात्मा साधना भक्ति करने वाले के पाप नाश नहीं करता, पाप अक्षमा नहीं करता, और फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि फिर भक्ति किस लिए करें? स्वामी जी कहते हैं उससे और लाभ हो जाता है। वो क्या लाभ होता है कि पाप तो नाश होता नहीं भक्ति से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है। अरे भले आदमी, निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, वहां साक्षात्कार होता है उसका, इंटरव्यू लेने वाले का और देने वाले दोनों सामने साक्षात होते हैं, साकार होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार करना भी उसको साक्षी, उसको सामने स्पष्ट देखना होता है और निराकार दिखाई दे नहीं सकता। अब थोड़ा सा एक प्रसंग और बीच में आ गया कि परमात्मा अपने भक्तों के पाप नाश करता है वा नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर करके फिर निराकार साकार की स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिएगा, ये है सप्तम समुल्लास चल रहे हैं और 37 प्रकाश है ये, इसके 163 पृष्ठ पे यहां देखिएगा, यहां और स्पष्ट कर दिया है। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों का पाप अक्षमा करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। फाइनल कर दिया इसने तो कि पाप नाश नहीं करता, जिसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण पवित्र वेदों में लिखे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई प्रश्न करता है किसी को, जिसने अपने मकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है MBBS MS, और उससे कोई पूछता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो सामने वाला जो इतना लंबा बोर्ड लगाए बैठा है, दुकान खोल रहा है डॉक्टर की, और वो ये कहे कि नहीं औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता, अब सामने वाला कहेगा फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है जब रोग नहीं कटे, रोग ही नहीं कटेगा, तो वो सामने वाला वो नकली डॉक्टर वैद जवाब क्या देवे कि औषधि खाने से रोग तो नाश नहीं होगा लेकिन पहलवान बन जाएगा, तो क्या वो डॉक्टर है, क्या वो वैद हो सकता है? वो तो कोई गुटी लाए बैठा है, नकली बोर्ड ला रहा है। जो ये शब्द कहेगा कि औषधि खाने से रोग नहीं कटे और फिर वो औषधि खानी चाहिए किस लिए, क्या लाभ है कि पहलवान बन जाएगा, रोग कटे नहीं मृत्यु हो जाए, पहलवान तो बन लिया फिर। तो ऐसे यदि दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा है थोक साबुन विक्रेता, और साबुन की पूरी दुकान भर रखी है उसके साबुन के टुकड़ों की, और उससे कोई पूछता है क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, तो सामने वाला दुकानदार ये कहे कि नहीं साबुन लगाना तो चाहिए पर वो कपड़े का मैल नाश नहीं करेगा,
फिर सामने वाला स्वाभाविक बात है कहीं

0: का प्रश्न करेगा, फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या? जब साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता तो क्या यूज है उसकी लगाने की, क्या लाभ है? और वो नकली फिर उत्तर दे कि कपड़े को मजबूत बना देगा। साबुन कपड़े का पाप मैल नाश तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूत बना देगा। क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? इससे सीधा उसने लकड़ी के गुटके रखे सारे और मूर्ख बना रहा दुनिया ने कागज में लपेट के। तो ये सिद्धांत था इस महर्षि दान सरस्वती का जो आर्य समाज का प्रवर्तक कहलाता है। इसको कैक है भी पता नहीं था वेदों का और भगवान का। अब यजुर्वेद में वो स्वयं अनुवाद कर रहा अपने हकर कमल से, और यजुर्वेद में क्योंकि वेद जो है परमात्मा का विधान है, परमात्मा की गुण है उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा करता है। और जिसने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बताया है वो अज्ञानी व्यक्ति था, वो वेद ज्ञानहीन था। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दान सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, अनस्य अनस्य घोर एनस्य अनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी एवजनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहां लिख दिया मित्र तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के अवजनम एनस माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो, पितर करते से पिता के की हुए, एनस्य माने अपराध, या अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधाचरण लिखा है, अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है, एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो, अनस्य अनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवेदन माने नाश करने वाले हो। अब यहां मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहां परमात्मा ना लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुलास में भगवान के नामों की महिमा का की व्याख्या की है, विवरण दिया है, उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समुलास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18। यहां देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे सबको प्रीति करने योग्य है। वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप, बस सीधी सी बात। अब मित्र मान इसने यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में। अनुवाद में गड़बड़ करने की चेष्टा की कि पढ़ने वाला यूं सोचेगा कि ये तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। ऐसा ही हमारे साथ, जैसे हमारा और इस आर्य समाज के आचार्यों का सन 2004 से वाद विवाद चल रहा था। समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हम लिखते थे, वो भी उत्तर देते थे। जहां इस दास ने ये लिखा था कि महर्षि दानंद को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ये कहता है कि पाप नाश नहीं कर सकते, इस छात्र में समोल्लास में लिखा भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते। जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 के अनुवाद में महर्षि दानंद ने मित्र के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं। यानी जनता को मूर्ख बनाना उनका उद्देश्य था, लेकिन वो भूल गए कि अब आज से 150 वर्ष पहले वाला भारत नहीं है। अब हम स्वयं शिक्षित हैं, परमात्मा ने दया बख्शी है, प्रत्येक भारतवासी आज अक्सर ज्ञान युक्त है, और इनसे जिसा भी अनुवाद बिना इन्होंने अनुवाद किया है, और इनसे नहीं अनुवाद हुआ वो ये दास करेगा और बता रहा है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में वो पहले ही लिखा परमात्मा की वाणी में। अब देखो यही यजुर्वेद 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, 8वां अध्याय, और ये हमने पढ़ा 13वां श्लोक मंत्र, इसके यहां पर यह अनुवाद किया स्वामी जी ने। तो यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, हम यहां लिखेंगे ये सब के उपकार करने वाले परमेश्वर आप, दान देने वाले के एन से माने अपराध मानी यानी पाप के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए अन से माने अपराध के नाश करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले यानी नाश करने वाले हो। एक तो इस महर्षि दानंद की या थूरी ये विधान गलत सिद्ध कर दिया वेदों ने कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, जबकि वेद स्पष्ट करते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दानंद पूर्ण रूप से वेदों से अपरिचित था, अज्ञानी था। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है वा निराकार। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, सह शरीर है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 3/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस। अब इसमें स्वयं स्वामी जी ने स्टार्ट किया है जो प्रथम मंत्र प्रथम ही सूक्त और इसका प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है और इस अग्नि शब्द को इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि जहां यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण ये है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्वर्ण के इंद्र आदि अनेक नाम होते हैं। इत्यादि सत्पथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। मैं अग्नि शब्द प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर। और इसी आधार से स्वामी जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर एक सूक्त नंबर एक का मंत्र नंबर दो, इसमें अग्नि शब्द है, इसका अर्थ इन्होंने स्वयं कहा है अग्नि माने वह परमेश्वर दूसरे में। अब ये तीसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर एक सूक्त नंबर एक का मंत्र नंबर तीन, इसमें भी अग्नि अग्नि ना एव अच्छी प्रकार ईश्वर अग्नि माने ईश्वर। चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और पांचवें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में देखिएगा, छठे में अग्नि माने हे परमेश्वर, और फिर सातवें में ऋग्वेद मंडल नंबर एक सूक्त नंबर एक मंत्र नंबर सात में अग्नि माने हे उपासना के करने योग्य परमेश्वर। अब आठवें अग्नि शब्द नहीं है, नौ में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्मा, अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहां भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है, और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं, देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहां से छपा है, ये आपको बताया था वैदिक केती मंडल, ये इसका प्रकाशक है, मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है, यानी अग्नि माने जहां भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर, मुख्य तौर पर। अब 17 पे है, प्रश्न नंबर 17 पे प्रथम समुल्लास में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह, इस महर्षि दानंद जी ने केवल डेढ़ वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी, उसके बाद शेष जो ढाई वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा उनमें से एक सामवेद अनुवाद किया गया, ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जिल्द किया गया है, अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं, ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए, प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाषितना, प्रकाशक हैं पंडिता राकेश राणी, अध्यक्ष दानंद संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से। अब इसके इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है, सामवेद भाषा भाषम ये प्रथम अध्याय है, और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी अग्नि शब्द है, और आठवें में अग्नि माने हे ईश्वर, और नौवें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी दसवें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी आप देखोगे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि दानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके, वेदों को समझ कर इसकी रचना की। सत्यार प्रकाश की इसमें जो लिखा वो वेदों अनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं, परमात्मा सशरीर है, वह मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है, वेदों का केवल अनुवादक है, जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जा विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
3: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
2: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। पांचवें अध्याय का प्रथम मंत्र ये है। पांचवा अध्याय इस पंचम अध्याय आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में ये प्रथम मंत्र में लिखा है, अग्ने तनुरसी विष्णवे त्वा सोमस्य तनुरसी। दो बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहां गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बताया ये क्या अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ दियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के हिसाब है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है, अग्नि माने हम लिख जाएंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी, परमेश्वर से शरीर है। और यहां देखो विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते यह लोक त्रयमावि से विवर्ती। अवे ईश्वर है वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, वो परमेश्वर वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का तनु माने शरीर असी माने है तवा माने उस विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए तवा माने उस सोमस्य माने अमर पुरुष का तनु माने शरीर असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। अपुनात्मा जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको दिखाते हैं, प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र। वह इसने के बठा बठा रखे अनुवाद में, कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाषे और ये प्रथम अध्याय का ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्ने तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृहद ग्रह असी। अब इसका अनुवाद क्या किया इसने? पहले तो ये देखिएगा कि अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्ने तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्ने शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है कि इसमें कहीं भी अग्ने शब्द नहीं है। अग्ने तनुरसी कहीं पर भी नहीं, अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी, फिर आगे वो दो बार लिखा पाया इसने, करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहां क्या अनुवाद कर रहा है इसमें? प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सजनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मुसल आदि पदार्थ विद्वान व जीव गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मुसल ग्रहण करता हूं। भगवान शर्म मारेगा पत्थरों का और काठ के मुसलों का, इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना, कोई बात हुई, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल नो मैं ग्रहण करता हूं, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्ने तनुरसी विष्णवे त्वा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असी यानी वो अतिथि रूप में यहाँ आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर। और आगे देखना इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। अय है कहते हैं, चोर चुरावे तुम्बड़ी वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व उपराव न सच्चाई छ नीना। यह देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद, महर्षि दानंद जी का अनुवाद, यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिस लिए अग्ने, खुद लिख रहा है अग्ने वर्तपते यानी जगदीश्वर, आप वह बिजली, बिजली के लड़ाई दी इसमें, आपका बिजली परमेश्वर या बिजली दोनों लिख लिया, बिजली भी सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं, इसलिए उस आप वा बिजली के, बिजली में मैं पूर्वोक्त वर्तों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूं, जो यह तव माने आपका, आप और उसकी, उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है, आप तव माने आपका, यह आपका तनु माने शरीर है, हैं वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है, सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत, अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनुर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है, परमेश्वर का, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। आए, आए। हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है, शरीर या है लिखना चाहिए, शरीर है और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तम तासे सेवन हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी इसने सारी, इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में स्थित होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा हूं इसका, इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 बगे तनूर, तनु ये तनु है, वरिष्ठा तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यही पर है ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग अलग अलग इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आ गई, अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को, ऐसे एज इट इज चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में, उसमें लिखा है कि नरवत, नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है, यही महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं, ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय, और यजुर्वेद और इसका 39वां मंत्र 39, इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं, जो इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य है, नरवत माने मनुष्य के तुल, मनुष्य के तुल परमात्मा है भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहां लिखना था ए महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो अच्छी प्रकार, सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले, दो प्रकार के ज्ञान से संयुक्त कर, इसने तड़ंगा कर रखा है। बाकी हमने ये देखना कि हे परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य है, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं, यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है, इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, मनुष्य के समान के तुल्य अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ ये कि वो परमात्मा आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं, ये महान इंद्र। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा, ऋग्वेद ये भी दानंद सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल, और ये कहां से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है, इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरा है, इसने क्या लिखा है, मनुष्यवत मनुष्यों के जाने आने के समान, मनुष्यवत इसका अर्थ लिखा है, मनुष्यवत अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं, मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल परमेश्वर, आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो, उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर, लिखना था अध्यक्ष लिख दिया, हे पवित्र अंगीर माने शरीर, शरीर धारण करने वाले विद्याओं से सर्वत्र व्यापक ये अग्नि माने परमेश्वर, अब पूर्ववत जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले शरीर व्याप्त प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गढ़ रखी है इसने, अंगिरस वर्तमाने सह शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो, और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए, उस मनुष्य को विद्या आदि क्रम और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने लिख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था, आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं, इसका वास्तविक अर्थ तो ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं, उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए, आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए, ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मैर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से, और ये छपा कहां से, यहां से, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है वह कांतिमान परमात्मा। इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर है, वो कबीर देव है, ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर कहते हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं, इसका अर्थ इन्होंने कवि कर दिया और कवि बनाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना था कबीर देव, इन्हीं के शब्दों में पुण्यात्माओं परमात्मा ने आपका जो जन्म अब दिया है मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अब हम परमात्मा को आसानी से पहचान सकते हैं, हम शिक्षित हैं और इन अज्ञानियों ने जो अनर्थ कर रखे उनको हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी जानबूझ के। और आज शिक्षा का यदि कोई लाभ है तो भगवान पाणे में सहयोग है, अन्यथा इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी, इसने बेईमान बना दिए, हम एक दूसरे के शत्रु बना दिए, 24 घंटे मन में दोष रहता है और उसको अब सेट करने में बहुत समय लग रहा है हमारे को, लेकिन अब हो जाएगी, सारी सेटिंग भी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से हमें घना लाभ मिलने लग जाएगा तो हम सब बुराइयां त्याग देंगे। तो इस शिक्षा का अगर लाभ है तो परमात्मा पाने में अति सहयोग है। इसके लिए वो आपको दिखाते हैं कि जहां जैसे कवि लिखा, कबीर लिखा तो वह लिखना चाहिए था अनुवादकर्ता ने कबीर देव, जैसे इस यजुर्वेद है, ये देखिएगा ये महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवाद है, ये एक यजुर्वेद पुस्तक है, इसके ऊपर रह लगा है, यहां अगर दो अपसर्ग लगा दी जाए तो भी ये यजु, अगर ये अकेला शब्द भी कहीं पर है, ये वेद ना लिखा हो तो भी इसकी महिमा कहीं हो रही हो, तो हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ये देखिएगा महर्षि दानंद सरस्वती ने भी ऐसा ही किया है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये दानंद सरस्वती का ही अनुवाद है और इसके 36वें अध्याय का ये यजुर्वेद भाषा भाष्य है और ये है 63वां अध्याय 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु लिखा है यजु, और ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यहां इस दानंद ने अनुवाद करते समय यहां ठीक अनुवाद किया है, यहां लिखा है इस यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को, ओह बहुत ठीक किया, यजु शब्द लिख दिया, इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा चल रही है और यदि यहां यजु का अर्थ कुछ अन्य कर दिया जाए तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे, किसकी महिमा है ये। ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं ऋग्वेद में, इसी प्रकार अब हम ऋग्वेद में जहां परमात्मा कवि, इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर को कवि कर दिया, उसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, गलत कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर साहब, हम कबीर साहब कहें, देव माने साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह को। अब हम ऋग्वेद पर आते हैं क्योंकि बीच में ये कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए यजुर्वेद लिया था बीच में, ये वही है, यहां से ये छपा है, प्रकाशक है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का, मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं, देख कितना स्पष्ट है इसमें, ये कबीर लिखा, कबीर अत्यय, तो इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, दो अपसर्ग लगा दिए तो फिर भी यहां लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव लिखना था, जैसे ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर एक में यहाँ लिखा है वो कबीर देव, कबीर देव, वो कबीर देव, ये कबीर साहब लिखना चाहता हूँ, कबीर परमेश्वर। तो यहाँ केवल कबीर लिखा है तो अभी ये कबीर देव ही लिखना पड़ेगा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा है, यज्ञ करने वाले यजमानों माने साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में, यानी परमात्मा कबीर देव वो लिखना था, वह कबीर देव कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बहुत शीघ्र गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, गति करके वहां से चलकर आता है। ये देखिएगा अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27 में क्या कहा है, हम यहां लिखेंगे जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, फिर यहां लिखेंगे जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है, द्यूलोक के उस तेजो में लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो प्रकाश रूप है, यानी एक देशीय हुआ वो परमात्मा ऊपर तीसरे द्यूलोक के यानी उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर तीसरे स्थान पर विराजमान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहाँ आते हैं मंत्र नंबर 1, देखना कितना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप अरुसे माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला हरि माने पापों का हरण करने वाला, अर्युदान मठ कह रहा था मेरा पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला पापों का नाश करने वाला, वह है राजेव राजा के समान। ये देखना हम 269 यानी 269 पे और यहाँ पर लिखा कि वो राजेव राजा के समान, इसका शेष है 270 पे, ये है शेष 270 पे। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र हम एक पढ़ रहे हैं 270 पे, राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है, राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है, वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह है वर्णीय पुरुष को श्रेष्ठ, वर्णीय माने श्रेष्ठ भगत पुरुष को व्यक्ति को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, और वो उसका उद्देश्य क्या होता है ये देखिएगा दूसरे मंत्र में, वो किस उद्देश्य से आता है वो परमात्मा, ये कबीर शब्द है यहाँ पर, कबीर कुल पाठ में कबीर कबीर वेदस्य, ये परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हो, और आप कांति अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से आप चलते हो, आप ये फिर सर्वज्ञ लिख दिया, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आगे आगे आप पापों को दूर करके हे सोम हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें अपना आत्माओं। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है, राजा तो मनुष्य जैसा ही होता होगा और कौन सा वो पत्थर जैसा होता है, और वो स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है और वहां से गति करके आता है, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो किस किस को मिला? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहेब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहेब जी को मिले, आदरणीय नानक साहेब जी को मिले।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
3: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670-63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दियां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड

0: परमजीत पलाहा डेजर्टिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
2: हर जोग जोग

राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम आगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणाख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जे निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन

तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ावर ना कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू नहीं चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करह सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जान ओई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई, जो तो पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनो कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, बिजोग मिले बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाना, हर गुण सद ही आख बखाना। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरडै पहिले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चाला। हम देखा तह डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना। जिंतु नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन किहे तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जाप ताप

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कवियो वाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण नमन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हाद मोहे बिचाव हो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सभा करतारा मोर अच्छा निज करदा करिया सब बैरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह।

प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याओ जो वर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाक द मुझे अवरिय मरण काल का त्रास निवरिय पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तोज जु करिहो रक्षा राख ले हो मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के अंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो आद अंत कैवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जावुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जावया करख करत हो कबहूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते वादन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद आरालम रंका निर्विका निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेवना पापत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप नूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट भयो संकर अकैठा सागरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सजंपव अव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करोरण काता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय हैं ताकि काल निकट न हैं रक्षा होए तहे सब काला दुष्ट रिष्ट ट्रें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह छ सकै न कोई एक बार जंत मैं संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर ना

सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद स्वै बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखाने। दोहरा सागर।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह सेती मन वजिया बाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया, शब्दों तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल हो तू मन मेरे दुख सावे सारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला स्मृत स्वामी सो क्यों मनहो बिसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरै, घर तां तेरै सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सा पूजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दी आए बड़ियाईया। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित कर।

श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाई, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताई, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसां पा

चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी।

सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला नावा मानरे प्रभ के शरण विचारो जह सिमरत गन कासी उदरी ताको जास उर तारो। मान रे प्रभ के शरण विचारो जह सिमरत गन कासी उदरी ताको जास उर तारो। रहा

दुख हरता एह बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जावहि शरण गहि कृपा निध,

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਆਸਾ ਦੁਆਰਾ।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।